0: வணக்கம், நான் உங்க திரைப்பட பின்னணி பாடகர் நாட்டுப்புற இசைப்பாடகர் வேல்முருகன் பேசுறேன்.
1: நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 102.3 விவித் பாரதி தமிழ் எஃப்எம். ஆடுங்கடா மச்சாடுங்கடா, அழகான பொண்ணை பார்த்து தேடுங்கடா, பாடுங்கடா மச்சான் பாடுங்கடா, பாவாடா பின்னாலதான் ஓடுங்கடா.
2: உங்கள் விவித் பாரதி தமிழ் 102.3 இன்று காலை 8:30 உங்கள் விருப்பம். இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோ.
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान.
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार.
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: இணைந்திருங்கள் நீங்கள்.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
4: இவன் என் தம்பி ரொம்ப குறும்புக்காரன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப மார்க் ஷீட்டை போட்டோஷாப் பண்ணி அப்படியே காட்டுவான் நேத்து கரண்ட் பில் ஜீரோ இருந்ததை பார்த்தேன் அப்போ இவன் கண்டிப்பா போட்டோஷாப் பண்ணிருப்பான்னு நினைச்சேன் இல்லைன்னா கரண்ட் பில் எப்படி ஜீரோவா ஆகும் கேட்டா சொல்றான் அண்ணா எல்லாம் மேல இருக்கிறனோட மகிமை சோலார் பேனல் இருக்குதுல்ல ஓ இது நல்லா இருக்கே தம்பின்னு சொன்னேன் பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்